प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरों महला पहला का शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आया। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंधले क्या पाया जग आए, पाप के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहिब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसनु पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गलबात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गलबात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमली है बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाए। जरा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सुखगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आंदा है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पै बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चल रहा वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे उसनों भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती एक कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो फिर भी राम ना बैठे रही है। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु कित्थे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तो आपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, श्रृंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है। अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धोई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धोई फिरदी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसी खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनु अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनु उस पासे वल जाण नु वरतो जिस पासे वल जाण नु तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नु जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनु पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नु विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दी आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नु वेस्ट ना करो, इसनु गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आप नूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ, ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

ठेकेदारी, इतना कुछ हुंदिया होया भी ए इंसान, गुरु महाराज जी आखते हैं तेरे अंदर फिर रब ने एक खास ज्यूर रखिया है, खास जोत रखी है, खास पदार्थ रखिया है, जिस नाल तेरे सारे डर, सारे दुख, सारिया दर्दां, सारिया थुड़ां, सारिया तकलीफां कहिंदे उस वस्तु नूं प्राप्त करन दे नाल समाप्त हो सकदियां हन। अगर तू उसनू नहीं पाया तो फिर हाले तक तू की कर रहा है? फिर कहिंदे हन तू की पाया है इस जगत दे विच आके, अंतले क्या पाया जग आए। समा भी समाप्त है, प्रेम नाल सारे गाओ। अते हुण इस विचार दा जो कंडा चुभना चाहिदा है, जे नहीं चुभदा, ये सानू नहीं साडे अंदर कोई टर्मोइल ल्यांदी, साडे अंदर नहीं सोच विचार पैदा करदी, फिर इसका अर्थ यह है कि असी किसी ना किसी नशे के अधीन हाँ, कि सुन के भी साडे उत्ते असर नहीं होंदा। प्यार ना लगाओ।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जर्वेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ये सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटलैक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी वड्डी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आता की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आसा जी बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलीए फुलीए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलीए फुलीए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज भी मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आता। आप जी ने कितनी दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा ये गल सुनन मिली है, कितनी दफा ये गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने ये पॉइंट ही रेज किया है जा सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नूं असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साडे गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नूं असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है, पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो अज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ए है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र सुन

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आप

बड़े बड़े अस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कितने कितने भयानक रोग जो हैं उनका इलाज आसानी के नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है। तुसीं आखदे हो जीना नहीं आता। महाराज जी आखते हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह, दसो फिर किवें नहीं जीना आ गया? असीं तो सोचते सी बड़ी तरक्की कर गए, असीं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसीं आखदे हो जीना नहीं आता। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हन। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खट्टिया खांदा खांदा यह वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है। मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया, जिन्हां ने तो भाई इथे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इथे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मा दा खटिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा है ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड़ के तुर जांदा है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है, हो सकदा है महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे ओ भी नहीं है, हो सकदा है चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहन नाल सुख मिल जाए ओ भी नहीं है, क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चल

शरीर तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, स्वाद बन जाएगा, एक स्वाद ही मुट्ठी है ये शरीर। इसलिए हजूर कहंदियां भाई इस शरीर लई तू बहुत कुछ करदा है, क्योंकि मनुख सौंदा है शरीर लई, खांदा है 36 प्रकार दे भोजन इस शरीर लई, चंगे चंगे सोने बस्तर पहनदे कादे लई शरीर लई। आख्या अज तक तू सब कुछ शरीर लई कीता है, पर जिस आत्मा दे आसरे ए शरीर चल रहा उस आत्मा नू तू भुखिया ही मार देता, उस आत्मा नू कदे नाम दा भोजन ना देता, ए तां तन शार हो जाएगा। इत्थे तां जो कुछ नजर आ रहा है सब कूड़ है। वेखदे हो ना मनुख चला जाए संसार तो ते किवें अर्थी जा रही होंदी है, उस वेले मनुख दा मन निर्मल होंदा है, उनू याद आउंदी है मौत कि मैं भी एक दिन जाना, पर जदों शमशान भूमिका तो बाहर निकलदा है ते फिर ओही गल्लां ओही निंदिया चुगली ओही सब कुछ फिर मोह माया दे जाल विच फस जांदा है। आख्या जे परमेश्वर नूं याद रखना है तां मौत नूं चेते रख। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजिया होया, राजा आया दर्शन करन लई ते देखिया इत्थे सारे ही नर नारी बिरद बच्चे जवान सब बैठे हन जुड़े हुए हन। राजे दे मन विच शंका हो गई भई गुरु भी जुबा अवस्था दे, बच्चे बच्चिया भी इत्थे बैठे हन, बिरद भी बैठे हन, बच्चे भी जुड़े बैठे हन, ते ए थिर किवें रहिंदे होणगे, क्योंकि मन तो हर वस्तु नूं वेख के लुभायमान हो जाता है। ते अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह राजे दे दिल दी गल नूं बुझ गए, भाई राजे दे मन विच शंका आ गया कि जिथे एने पदार्थ गुरु के दरबार विच चढ़दे हन, एनिया वस्तुआं लोग लियांदे हन, एडी माया दा पसारा है, फिर नर नारी सब आके इत्थे जुड़दे हन, इना दा मन इना दी आत्मा किवें स्वच्छ रहिंदी होवेगी। ए सब कुछ जानी जान धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जान गए भई राजे दे मन विच शंका हो गई है। ओदी शंका नू निवृत्त करन लई आख्या राजन तेरी तो उम्र ही कुछ दिन रह गई है, तेरा तो अंत समा नेड़े आ गया, ते कुछ कर ले कुछ जप ले। हुन राजा सुन के भई मेरी उम्र थोड़ी रह गई है, अपने महलां नूं आया, हर वेले मौत चेते है, पता नहीं किस वेले आ जानी, हुण कुछ चंगा नहीं लगदा, राज गद्दी ते बैठना चंगा नहीं लग्या, धन दौलत विच विचरदियां चंगा नहीं लग्या, अहलकार हथ बद्धी खड़े हन, सेवा लई उडीक कर रहे हन, हुण सेवा भी कराउणी चंगी नहीं लगदी, रानियां दे कोल जाना भी चंगा नहीं लगदा, रंग रलियां मनाउणियां भी चंगियां नहीं लगदियां, सब कुछ संसार बिनस जान वाली वस्तु लगन लगा। जदों कुछ दिन बीत गए तां धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सेवक नूं भेजिया, आख्या जाओ राजे नूं कहो भई तुहानूं सतगुरां ने याद कीता है। जदों सेवक ने जाके सनेहा दिता तां राजा कहिंदा मेरे कोल तां हुण तुरिया भी नहीं जांदा, शरीर इतना निर्बल हो गया है, हर वेले मौत चेते आ रही है, पता नहीं किस वेले मौत आ जानी है। ता सेवक ने आख्या भई सतगुरां दा हुक्म है पावे पालकी ते बह के आओ, एक वेरा गुरु दरबार विच तुसी जरूर पहुंचना। ते राजा जदों पहुंचिया गुरु दरबार विच तां धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे राजा आ जदों दे इत्थों साडे कोलों तुसी गए हो अपने महलां विच कितनियां कु रंग रलियां माणियां हन, कितने कु सुख भोगे हन, कितने को राज दा आनंद माने। आख्या महाराज आनंद की मानदा सी, की मानना सी आनंद, हर वेले तो मौत चेते आ रही है।
ਤੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਾਨਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਰਧ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਔਰ ਜੜ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीयां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है। कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीयां मंगां कबूल कर रहे। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहिब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तों इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगणा किवें है ते मंगणा की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पेक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पेक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा। इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहिए।

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए। किवे मंगे बबीहे दी तरह, उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंद है ना रात विंद है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रहे हैं। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,